हमारा। जावन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाज कियो, घट घट

प्रभ को भयो जन्म तरहा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कैद सुनाए कब वाच दोहरा ठाड़ पहो मैं जोर कार बचन कहा सरन्याए पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुगत फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मो कोटक बिस्न महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेराव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग या टल सब कोई पाखत नेत सुरग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चाओ पाई जो यह कथा सुने रगावै दुख पाप तिह निगट न आवै बिसन भगत की ए फल हुई आदि व्याद शुवै सकै न कोई संबत सत्रह सैद पचावन हाल वदी प्रथम सुख दामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण कियो राग बर कथा प्रसांग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुत कह हम एक न जाने श्री पान कृपा तुमरी कार मैं न कहे साब तू हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गहे तुम्हारो द्वार बाही गहे की लाज आस गोविंद दास तुम्हार

दंडावत बंदन अनकबार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखहु प्रभु नानक दे कर हाथ सुकाहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तो

चरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जाप कल सुजास।

0: अमे दृष्ट शुभ करै हरा आग पाप सकल माल।
1: माल पाठ पोला ही करना जिवे पंक्ति आप जी ने साध संगत जी सवैया तकरीबन सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो भी रागी सिंह बहुत गुरमुख प्यारे जेडे पढ़ते हैं पर ध्यान रखना साध संगत की मात्रा का ये असी सुन के जो कंठ करते हैं ना फिर बहुत सारिया गलतियां साड़ी जुबान ते चढ़ जांदियां सो इस करके ध्यान दे नाल अम ऐ दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल माल। माल पाठ पोला ही करना इनू मल नहीं करना। हांजी

0: दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय।
1: जो आप हुक्मनामा साहब लैने ज्यादातर मंगल सारे गुरमुख प्यारे पढ़दे है, पर साध संगत जी बहुत वार इनू टल पाठ नू जड़ा है टाल पढ़ी जांदे पोला, ते कईयां नू साध संगत जी शब्दी कईयां दी रसना ते सुन सुन के होर पक गए हन। जिवें आप जी ने सरवण कीता है, सो कह टल गुर सेवीऐ, टल भट साहब जी दा नाम है। ते जे टाल कवांगे फिर साध संगत जी एक ते लल्ले दे थले बिंदी लगेगी, ते टल नहीं कहना, टल पूरे टैंके ते जोर ला के लल्ले दी आवाज शुद्ध आनी चाहीदी है। सो कह टल गुर सेवीऐ अहनिस, एहनिस एहनिस पाठ भी जड़ा हाहे दी आवाज जरूर लाउणी। एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै, परसिया पाठ सस्से दी सिहारी दे नाल है, ज्यादातर परसिया पढ़ी जांदे दर्शन परसिया, जां कई परछीए कही जांदे है सस्से दे चरणां च बिंदी ला के, ओ भी नहीं करना, सस्से दी सिहारी दे सहत। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए,

0: हर नाम रसन गुरमुख बरदाया उल्ट गंग पश्चिम धरिया।
1: बरदाया दद्दे नू कन्ना जिथे लगा एदे तो अगे ईड़ी नू सियारी ते ऐड़ा ओ वादू लगेगा जइये दे उचारना दे विचों जिवें ग्यानी जी ने उचारन कीता आवाज उही रहेगी। पश्चिम जिवें ओ साध संगत जी पश्चिम दा चचे दी आवाज इन्नी जिन्नी उचारण दे विच आप जी ने सुनी है चरणा दे चचे दी इसे तरह ही आवाज लाउणी। हांजी
0: सोई नाम अशाल भगत है पावतारण अमरदास गुर का फुरिया सिमरह सोई नाम जाख अर किन्नर।
1: नाम ते जंक लाओ।
0: सिमरह सोई नाम जाख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध।

0: हमे रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै
1: दुरत
2: उपजै
1: दूरे पढ़ दो हांजी
0: मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग ना हुटै
1: हुटै पाठ कस के करना हुटै नहीं कहना जिवें उच्चारण कीता हुटै
0: संजम सत संतोख सील सन्नाह मफुटै सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस तूर बजायो
1: बेद नै इनू निखेड़ के उच्चारण करना बेद बोल के नै सतगुर प्रमाण बेद नै सिरयो ऐदा बिदना इकट्ठा नहीं पढ़ना सतगुर प्रमाण बेद नै सिरयो जग जस तूर बजायो
0: गुरु रामदास कल उच्चरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमर

0: ना हुटाए। सतगुर शब्द अथाह अमे धारा रस गुटाए। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो।
1: माता पाठ पोला ही करना, माता नहीं, कई माता दा अर्थ हुंदा है मत्या होया, ते माता दा अर्थ मां। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो।
0: आज उन्नी संपव्यो जगत गुर बचन तरायो।
1: एथे संपव्यो ससे दी टिप्पी दे सहत अगेतर ला के पबा शुद्ध बोलना पबा सांझा नहीं। संपव्यो हां जी।
0: अभिगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो। जगत उदाहरण नव निधान भगत है पवतारण। अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण। सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे। गुर प्रसाद पाई अहे तन ते जन बड़ भागे। हे मुक्ते पए सत गुर शब्द।

जिन कहो गुर सो प्रसन्न, दूरत दूर अंतर नासे। गुर जिन कहो सो प्रसन्न, मान अभिमान निवारे। जिन कहो गुर सो प्रसन्न, शब्द लग भव जल तारे।

0: मन उदास हो जाता है। मैं कवित कहन लगा कि खम अवगुण परे एक गुण नाही। कह लगे क्यों उदास हुंदा है? कहिंदे ने परमात्मा तेरे दर ते लिस्ट ही सिर्फ उन्हां दी है कि जेड़े प्रेम करदे ने, बंदगी करदे ने, मुहब्बत करदे ने, तेनूं इश्क करदे ने, पर मेरे कोल तां कुछ भी नहीं। मेरे कोल भगती सिमरन नहीं, मेरा किरदार चंगा नहीं, मेरे आचरण विच कोई उचताई नहीं। महाराज कहिंदे ने एक पासे आवाज आउंदी है परमात्मा भगत वचल के भगती नूं प्यार करदा है, ते नाल ए भी आवाज आउंदी है कि जिस पापी नूं कोई ना रखदा होवे परमात्मा ओनू भी रखदा। हम अवगुण परे। दूसरा वचन कहिंदे जदों सुनना कि परमात्मा तां घट घट के अंतर की जानत है, हर एक नूं देखदा सुनदा सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर, खसम नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, परमात्मा अंतर जामी है, ते मन डोल जांदा मना कि जेड़ा अंतर जामी है तेरा ता पाज उगड़िया। जो तेरे अंदर है वो परमात्मा जानदा है, पर गुरु करो एक आवाज आउंदी है केवल अंतर जामी नहीं सब कुछ जानने दे बावजूद भी वो पर्दे पा दिंदा। इसे नूं कलगीधर स्वामी जी ने कहा कि दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे, पश पशु नग नाग नरात सर्व समय सबको प्रतपार है, पोकत है जल में थल में पल में कल के नि कर्म विचार है, दीन दयाल दया नित दया दा खजाना, दीन दयाल दया नित दोखन देखत है गुना वेखदा भी पे है, पर देत ना हारे इना बख्शिंद कहे बंदे दे गुनाह देख के रात नूं रोटी फिर दे देता। सतगुरु कहिंदे ने तू मन लै देख इना बख्शिंद। फिर मैं शब्द वाल आवां, भाई साहब कहिंदे ने मैं भगत नहीं ते मेरे ते भगत वछल वाली किथे कृपा होनी, पर पापी जरूर हां, तू पापियां नूं पार करना, मैं अंदरों कपटी खां तू अंतर जामी जानना, परदे जरूर ढकेगा, मीह पैंदा होवे ते सिमल फिर फोके दा फोका रह जांदा, तेरी बाणी दी किन्नी को बरखा हुई, मैं अंदरों राशी ना भरिया, पर इन्ना पता है कि चंदन दी हवा लग जाए ते सिमल विच भी सुगंधी आ जाती। भाई साहब दे शब्द ने कह लगे भगत वचल सुन होत हूं निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उर तार हूं, अंतर जामी सुन कंपत को अंतरगत, दीन कह दयाल सुन भय प्रमटार को। शब्द वरते उन्हें जल तर संगम कह अफल सेमल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मैल गार हूं, अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं उठौर। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं उठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समार, तेरे भरोसे ते जीना अपनी लियाकत ते नहीं। भगत रविदास साहब दा पहला शब्द ही है, देखो गुरु ग्रंथ साहिब च तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पै हम ना पाप करंदा। हुण इहदा भाव इह नहीं कि मैं उत्साहित कर रहा पाप करने चाहिए, मेरा सिर्फ इन्ना को मकसद सी। देखो प्यारो बाकी तो कोई गुण नहीं, घटो घट अपने औगुणा नु मान करके कह दिए, औगुणा का मान मैं शब्द वरते है कि मेरे वर्गा औगुणा वाला कोई नहीं। भगत साहब ने कहा कि जो पै खमना पाप करंता ऐ अनंता, पतत पावन नाम कैसे खुनता, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, ते औगुण की ने अमृत छाड़ बिखे बेखाई, अमृत छाड़ लिता ते जहर नूं खान लग पे। हुण अमृत शब्द दे तां बे काफी अर्थ ने, गुरु ग्रंथ साहिब च इहनूं नाम लै लईए, सिमरन लै लईए, चंगे गुण लै लईए, अमृत नूं त्याग दिता ते जहर नूं खान लग पे। सतगुरु ने वैसे बाणी विच ना कल के लखण ही दसे, महाराज कहिंदे ने कलजुग जदों वापरदा कल्ले समें दी गल नहीं, बंदे दे अंदर दे सुभा दी गल है। कहिंदे ने असल विच जदों कोई बंदा मिठे नाम नूं कौड़ियां कहिंदा है, जिदे च कुड़त्ते ने ओनू मिठा जान के खांदा है, ते जेड़े पाप करदे ने उहनां दीआं झोलियां चुकदा है, ते जेड़े बंदगी करदे ने दिन रात उहनां दी निंदिया करदा उदों कलजुग वरतदा है। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे, ऐसा कल मैं डिठा। मालक ऐसे काहे भूल परे, असी भूल गए हा, अमृत सी अमृत छड़ देता ते जहर मिठी लगन लग पई, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै। इथे भरम पै, भरम विच लग के मालक माया दे मोह विच प्रवृत्त हो गए, बस इस भरम च ही पै गए। ये भरम ही है ना कि जो कुछ मैं देखना पिया इस तो बिना मैनू कोई दिस ही नहीं रहा। सतगुरु ने कहा कि भरम है ही हो कि माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा जैसा मन कोई ना तैसा। माया मोह भरम च पै गए, ते सब तो वध तेनू प्यार दी करन दी थां पुत्तर नाल प्यार पै गया, इस्त्री नाल प्यार पै गया, परिवार नाल प्यार पै गया। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, तेनू प्यार करन दी थां। पर यह भी सच्चाई है, दुनिया दी प्रीत वाजियां तो शुरू हुंदी है ते एंडे दा वैणा ते मुकदा। दुनिया दी प्रीत जिद्दन भी खत्म हुंदी है दुखां ते मुकदी है, रब दी प्रीत रोण तो शुरू हुंदी है ते मिलाप विच मुकदी है। फिर मैं शब्द दोहरा देवां, संसार दी प्रीत हासियां तो शुरू हुंदी है, बच्चा जन्म लैंदा वधाइयां तो शुरू हुंदी है, मेरा बच्चा मेरी बेटी मेरा परिवार। पर याद रखो, दुनिया दी प्रीत ने जिद्दन टुटना है, इन्हे तोड़ नहीं निभना, इन्हे रोने नू जन्म देना है। हर जिस बंदे दी वधाई मिली है ओदे अफसोस ते रोक आउणगे, पर रब दी प्रीत विछोड़े दे बिरह तो शुरू हुंदी है ते मिलाप विच जाके आदमी संपन्न हो जांदा है। मालक असी दुनिया नू प्रीत कर बैठे, झूठी प्रीत विच पै गए, ते प्यारिओ जिन्ना अंदर कहिंदा मेरा पुत्तर, किते इन्ने मान नाल मेरा गुरु क्यों ना कहे। शब्द तां उही ने ना, मेरा परिवार ते ए मेरा करतार क्यों ना कह लवे। सतगुरु कहिंदे ने सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, संसार विच प्रवृत्त खां। पर गुरु रामदास जी, एक तेरे घर दा रस्ता देखे सुनिया है, पहला सुनिया है फिर आए, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। सब तो उत्तम पंथ गुरु की संगत है, पंथ दा अर्थ आप सारे जानदे हो रस्ता है। गुरमत विच सत संगत तो वड्डा कर्म कोई नहीं, जिन्ने भी धर्म दे कर्म ने ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़िए, भावें को दान पुन बारमुखी करे, सतगुरु कहिंदे ने परमात्मा दी कीर्ति ते साध संगत तो वड्डा कोई कर्म नहीं। हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन कह कर्मा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते ही मिलंत उस संगत विच मिलके जम त्रास मिटाई, जमा दा भय खत्म हो गया। देखो चार तुकां दा ए सवैया है, चेते सब नूं है, पर कई बारी शब्द चेते रह जांदा है ते अनुभव विचो गवा जांदा है। शब्द अखर चेते रहिंदे ने बोधक तल ते, रिपीट कीते जा रहे ने, पर उनू गहराई नाल उनू महसूस करना। पर महाराज कहिंदे ने एक सवैया ही अरदास दा किते महसूस कर कि मैं औगणा नाल भरिया, तू बेनती कर। सतगुरु कहिंदे ने एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास एक बेनती सिर्फ कि पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह, कुछ नहीं अपनी शरण विच रख लै, अपने चरणा विच टिकाणा दे दे। धन गुरु रामदास सिर्फ इको बेनती कि सानू अपना बना लै। मैं इत्थे थोड़ी जी बेनती करके संपन्नता करांगा। देखो शरीर ओही रहिंदा है, अज भी धन गुरु रामदास दे दरबार दी उपमा कहण तो बार है, पर असी इतिहास नू सिर्फ तरीकां विच बन्नी बैठे हां भी इस तरीक तक ही कृपा हुई, उदू बाद कृपा बंद हो गई। इस तरह है ना कि मान लो जे सरोवर दे इशनान दी गल चले चलदी है, हुण कई सज्जन तां अपने ढंग नाल अर्थ कर लग पए, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੋਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ? ਸੀ ਕੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਰੁਲਦੇ ਸਾਂ ਪੱਥਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਸੜੇ ਸੀ ਲੋਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Guru Granth Sahib Maharaj Ji di pavitr bani, e tur ki bani, dukhan da kaleshan da naash karan wali bani, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੈਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਤੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस्त अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सात संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: सात संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप होत उदार
1: आप त्रैलोक के निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नेहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए फल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समृत शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माही समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सत्य ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम।

फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सरमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे भेखी भेवे नमो काल काले नमो सर पाले नमो सर्व गाणे नमो सर भावणे अनंगी अनाथ इंद्र संग परमाथ नमो पहन पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहन पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नार

කරාජකරීමක කර්මංකරීමක සර්බංකලීහක සර්බංදලීහක සර්බතරමානක සර්බතරදානක සර්බතරගාවනක සර්බතරපවනක සර්බතරදේශක සර්බතරපේසක සර්බතරරාජක සර්බතරසාජක සර්බතරදීනක සර්බතරලීනක සර්බතරජාහෝ සර්බතරපාහෝක සර්බතරදේශක සර්බතරපේසක සර්බතරමාන සදායම් ප්‍රධානක සර්බතරජාපයක සර්බතරතාප के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मान सदैव प्रदान के सर्वत्र जाप के सर्वत्र थाप के सर्वत्र पहन के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं काली मैं के परमं पाही मैं के आकल आला मैं के साहिब कला मैं के उसनल वजू है तमाम रजू है हमे सल सला मैं सलीख तमोदा मैं गनी मोल सकास्ता गरीबल परास्ता बिलुंदल मकान जमीन उल जमान तमी जल तमाम रुजू अल नदान हरी भोला जी मैं रजाय के शकीन अनेक तरंग है भेद है भंग है अजी जोल नवाज गनी मुल्ख राज निरुक्त स्वरूप मुक्त बेभूत भर भूत प्रभ सुजुक्त सुदा है सदा एवं स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्व सहज है सदा सर्व सहज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है ओवं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग त्रिभुत स्वरूप है छेज है छूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी अल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेभुत

स्वरूप अपंगं विभूत परमाथं परमाथ सदा सर्वसाथ अगाध स्वरूप निर्बाध विभूत अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूप सर्वंगी अनूपे न पोतर न पुत्र

मंग अपरमंग अगंज अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग बेपूते सदा साचदानंद सतरंग प्रणासी करी मोल को निंदा समस्तोल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करी मोल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवें तवै प्रसाद सवैये सरा भग सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जती के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हू ते एक रति बिन एक एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर रूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गावन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गण जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख्या वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख्या पौन आहार जति जत तहर सब सो विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत।

तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन महन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेस मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री साहब को सरनायक जाच करें सो एक दवैया दानव देव ने दन साचर भूत भेख भवान जपेंगे जीव जिते जल में दल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मान में इंद्र गजेंद्र नरात अब जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सच्ची पात अंत

ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो कुबतान को पूजत है पस को

हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। केलबे सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जप है दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे, सोई दुख न तिसे व्यापत।

नहजा सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीवक मलीन जत कित संजम धोता जाय मन धोभ शब्द लागहु हर स्यों रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी।

सेव सकत आप पाए क्या करता आपे हुकम वरताए हुकम वरताए आप वेख्या गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक ससो लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी गुरबाजो तत्ता सार न जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जन हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए।

वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर वाय गुर

कूड़े आर हों विच पाप पुन विचार हों विच नरक सुरगवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरियै हों विच धोवै हों विच जाति जिनसी खोवै मूर्ख हो विच सियाणा मोख मुक्ति साना जान हो विच माया हो मैं छाया हो मैं कर कर जमते उपाय हो मैं बुझे तंदर सुझे ज्ञान भी हुना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखिया ले

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न हो। तू करता करना मैं नाही जा हऊ करी न हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना।

साईं भोए दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा कृष्ण हुक्म बनाए सी हुक्म मने हुए प्रमाण तक कसमे का मैन पाए सी कसमे भावे सुकरे मन चंदिया सुफल पाए सी तंदर के पैंदा जाए सी।

जागत ज्योत चबर शतर और तख्त के मालक जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के बोहिथ कल जोकी ओट शब्द गुरु वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ा वरना कोए सच्ची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मोख द्वार जी के स्वरूप नरजनी ज्योत तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सचे पातशाह जी की अपार रहमत बख्शिश का सदका है। अमृतले दियां बेअंत रहमतां बख्शिशां दातां नाल सतगुरां ने नवाजिया है। प्रेर के अपनी चरणी लाया सच्चे पातशाह जी ने दर आईयां संगतां दी इच्छा भावना सच्चे पातशाह जी जाणदिआं होइआं अपने सोहणे महल्लां विच सोहणे तख्तां उत्ते प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे और अलाही हुक्म सतगुर साहिब ने फरमाया सारी संगत लई सांझा अलाही बाणी दा नितनेम सिमरन आसा जी की वार दा कीर्तन और आनंद साहिब दी छे पौड़ियां दा कीर्तन गुरु चरण सरबत दे भले दी अरदास और गुरु महाराज ने हुक्मनामे दी बख्शिश कीती है। तरस कीता वाहिगुरु ने अपने हजूर दे सेवकां नूं सच्चे पातशाह जी ने मेहर करके सिंह साहिब ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिन्हां तों इह सेवा अमृत वेले दी लई है। आसा जी की वार दा कीर्तन गुरु प्यार वाले हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहिब भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी तिन्हां दे जथे ने सेवावां कीतियां हन गुरु कृपा करन। होर बेअंत सेवावां अमृत वेले तों संगतां गुरु के लंगरां दीआं सेवावां होर बेअंत सेवावां कर रहीआं हन गुरु रहमतां करन। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਅਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 721 ਔਰ 722 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲੀਏ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਰਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581 1900

0: 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musia, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस